0: নমস্কার, রেডিও মর্সেঙ্গি 95 মেগাহার্জ র ইন্টারনেট অনলাইন রেডিও মর্সেঙ্গি .org মা বিহান 6:35 বজেকো মর্সেঙ্গি সমাচার মা ম লক্ষ্মী কো স্বাগত ছ। প্রসারণ কো শুরু মা মুখ্য মুখ্য সমাচার কা শীর্ষক হরু।
1: मुख्य समाचारका प्रायोजक
2: आकर्षक डिजाइनमा सुनचाँदीका गरगहना बनाउन, खरिद बिक्री गर्न तथा राशि अनुसारका एवं अन्य पत्थरहरूका लागि जय बुद्ध ज्वेलरी बेसी सहर सात लमजुङ प्रोप्राइटर मणिलाल विश्वकर्मा।
0: मर्सेङ्गी गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, पालिकावासीलाई 50 युनिटसम्मको विद्युत निशुल्क गरिने। प्रदेश स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत बेसी सह नगरपालिकालाई 2,75,75,000 विनियोजन। चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा 6,000 बढ़्यो। रायनसले पाउने प्रदेश अनुदानमा 3,03,000 रूपियाँ घट्यो र लागू औषध दुरूपयोग तथा अवैध ओसार पसार विरूद्धको दिवसको अवसरमा

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम टेक अहिले ठीक एक बजे को छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: क्रिस्टल फाइनेंस
1: प्रोपाइटर सुनील विश्वकर्मा जय श्री राम सुनसादी पसल विश्वेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 7 एभरेस्ट बैंक नजिकै लमजुङ
2: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98465 95074 र 98065 58074

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: तपाईं रेडियो मर्सेन्जी एफएम 95

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: मर्सिडीज़ FM 95 मेगाहर्ट्ज़